0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट

0: परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade. But today, trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. He said that this is a defining period in India's journey where aspirations are reaching new heights. Mr. Modi said that at the G7's meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. Prime Minister said India's message to the G7 summit was clear, that global governance will only be effective when it is inclusive. Earlier, Modi was welcomed with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. The Indian community in France gathered in large numbers chanting slogans of Modi Modi and Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Narendra Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. Prime Minister said, "This visit to France has been extensive when it comes to engagement and outcomes." French President Emmanuel Macron recorded a special farewell video message in Hindi for PM Modi as he was wrapping up his trip to France.
3: Priye Mitre Narendra, Mujhe Bahut Khushi, we aapka Nice, Evian aur Paris. Maine ise saath ve daure ke liye swagat karke France aur Bharat ki dosti amara hai. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care.
1: President Draupadi Murmu will attend a program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar.

0: பதக்கத்தை வென்றது. உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி பி பிரிவில் இன்று அதிகாலை நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் கனடா 6-0 என்ற கோல் கணக்கில் கத்தார் அணியை வென்றது. வான்குவரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே கனடா ஆதிக்கம் செலுத்தியது. ஏ பிரிவில் மெக்சிகோ தென்கொரியா இடையிலான ஆட்டம் தற்போது மேற்கு மெக்சிகோவில் உள்ள குடாலாஜராவில் நடைபெற்று வருகிறது. மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள். உலக நாடுகளுக்கு இந்தியா ஒரு சிறந்த நட்பு நாடாக உருவெடுத்து வருவதாக பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். நவீன உலகில் மன அழுத்தம் மோதல்கள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் சமண மதத்தின் போதனைகள் அமைதியை தருவதாக மக்களவைத் தலைவர் திரு ஓம் பிர்லா கூறியுள்ளார். கொப்பரை மற்றும் பச்சை பயிர் கொள்முதலுக்கான அனுமதியை விரைந்து வழங்குமாறு மத்திய அரசை தமிழக அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கான நலத்திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு அத்துறைக்கான அமைச்சர் திரு விஜய் பாலாஜி அறிவுறுத்தியுள்ளார். தெற்காசிய த்ரோபால் போட்டியில் இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றனர். இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது.
1: சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ருயந்தாம் பிரவாச்சிகா நிதி ஜாஹ. அத வார்த்தாஹ. भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि विहितानि. प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल AI संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिण्या सह आर्थर मेंश इत्यनेन सह अपि मिलितवान. सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान AI इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषये अपि अवधानं प्रदत्तम्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति. नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रमरोजगार मन्त्री डॉ. मनसुख मांडवीयाः अवोचत् यत् गतवर्षस्य अगस्त मासात् आरभ्य 63 लक्षतोऽधिकाः कर्मचारिणः PMVVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति. सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः 25%-तः न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति. फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिंदी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रम् इति संबोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति. मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते. फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे. फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्. प्रवासार्थं च कार्तज्ञभावं ज्ञापितवान्. आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः. वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे. जय हिंद. केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्. कृषि मन्त्रालयानुगुणम् एषः क्रयणसङ्कल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्यसमर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति. अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तरप्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,248,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,797,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,000

0: सप्तशताधिकैकचत्वारिंशत्सहस्रमेट्रिक्टन्मितं कलायक्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण शत प्रतिशतं वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी नेरं काले 7 मणि।

0: नमस्कार सुप्रभात श्रोताओं, उम्मीद है कि आज की ये नई सुबह आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नई मुस्कान लेकर आई होगी। इसी सकारात्मक शुरुआत के साथ आपका स्वागत है आपकी अपने पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे में। अगले आधे घंटे तक हम रहेंगे आपके साथ, लेकर आएंगे देश दुनिया की प्रमुख खबरें, आज के दिन का इतिहास, कुछ खास व्यक्तित्वों से जुड़ी बातें, रोचक जानकारी और बेहतरीन गीतों का सिलसिला। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू तन्वी।
1: नमस्कार वैष्णवी एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल वैष्णवी हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड यू लिसन टू इट each and every day. This is a very special program for its amazing information, for the information that we give it to you, be it the historical information or the news or the Metro City updates and much more. And today is 19th of June, so what all is special about 19th of June, we'll let you know. And today is Friday, so just want to wish you a very, very happy Friday. Let's begin our program with the news headlines.
0: जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अनिश्चितता और व्यवधान के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में फ्रांस और भारत के बीच साझेदारी, विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन गई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: Prime Minister Narendra Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. Prime Minister said this visit to France has been extensive when it comes to engagement and outcomes. French President Emmanuel Macron recorded a special farewell video message in Hindi for PM Modi as he was wrapping up his trip to France.
3: Priye Mitre Narendra, Mujhe Bahut Khushi, we aapka Nice, Evian aur Paris. Maine is saath ve daure ke liye swagat karke France aur Bharat ki dosti amarai. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care.
0: Prime Minister Modi, today in New Delhi, PM.

0: विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
1: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at the minimum support price for 4 states. The ministry said that the procurement will be undertaken under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. Uttar Pradesh has emerged as the biggest beneficiary under the approvals for the summer 2026 season. In Gujarat, procurement of 18,250 metric tons of moong has been approved for the summer 2026 season. The minister also approved an enhancement in the moong procurement limit for Tamil Nadu under the Rabi marketing season 2025-26 from 885 metric tons to 990 metric tons. Mr. Chauhan approved procurement of 2,115 metric tons of moong during the summer 2026 season for Haryana.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी।
1: President Draupadi Murmu will attend a program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. After that, she will travel to Rairangpur in Odisha, where she will inaugurate several development projects. These include a medical camp organized by AIIMS Bhubaneswar, a mega rural piped water supply scheme for mining affected villages, the Matru Shakti Bhavan of the Brahma Kumaris, and a special circuit house. As part of the next phase of her visit, President Murmu and Prime Minister Narendra Modi will visit Pahadpur village in Odisha's Mayurbhanj district tomorrow.
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है।
1: In hockey, India defeated Uruguay 3-2 to register their third consecutive win and finish on top of Pool A in the FIH Women's Nations Cup in New Zealand yesterday. After conceding an early goal, India staged a strong comeback with Deepika scoring twice and Deepika Soreng adding another goal. Uruguay had taken the lead through Chiara Appenino in the 13th minute before Deepika equalized through a penalty corner in the 24th of minute.
0: श्रोताओं, अब रुक करते हैं देश के प्रमुख महानगरों का, जहां से जानेंगे शहरों की ताजा हलचल और दिन भर होने वाली कुछ खास गतिविधियों के बारे में। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने भारत के शीर्ष संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। वैश्विक रैंकिंग में IIT दिल्ली को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने 75 पायदान ऊपर चढ़कर 686वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वैश्विक रैंकिंग में 105वें स्थान पर शामिल है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 52 भारतीय संस्थान शामिल हैं, जिनमें से 13 भारतीय विश्वविद्यालयों ने दुनिया के शीर्ष 550 संस्थानों में जगह बनाई है। IIT बम्बई और IIT मद्रास भी विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में देश के कुल 52 संस्थानों को स्थान मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कल द्वारका स्थित नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में

0: अटल इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि ये केंद्र दिल्ली के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देगा।
1: अटल जी के नाम से अटल इंक्यूबेशन सेंटर और नेताजी सुभाष चंद्र NSUT में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इस प्रकार का एक इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है, जो अपने अपने तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स के आइडियाज को सोचकर आगे बढ़ाने वाले युवाओं को पैरों पर खड़ा होने का ये प्रयास NSUT और AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा किया गया है। इससे दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल मिले।
2: And from Delhi, let's move towards Chennai. The customs department seized 11 kilograms of hydroponic ganja worth 11 crore rupees from two passengers arriving from Bangkok via Singapore. This is the second seizure in 3 weeks. The Air Intelligence Unit at Chennai intercepted the two passengers from Kerala. The packets contained green flowering and fruiting tops with strong odor. It was confirmed that it was a hydroponic weed. The passengers were hired by cartels to transport the hydroponic weed to Chennai, from where it could be distributed to Bengaluru and Mumbai. While officials remanded one of them under NDPS Act, the other was handed to the Narcotics Control Bureau to trace and secure receivers. Further investigation is underway in the case. And we have some more news from Chennai itself. The Tamil Nadu government has halted the construction of 2,000 crore rupees residential housing project in Perumbakkam after finding that work has commenced without obtaining mandatory permission from the Tamil Nadu State Wetland Authority.
0: और अब रुक करते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों और नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए गुरुवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा, जबकि भंडारा गोंदिया में सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 98.44% मतदान दर्ज किया गया। सभी सीटों की मतगणना 22 जून को होगी। वहीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को फिल्मों की स्क्रीनिंग और विशेष कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। महोत्सव में बहुप्रतीक्षित एनिमेटेड फिल्म इनी मिनी मिनी मोए के साथ पूर्वोत्तर भारत की कहानियों और मराठी फिल्मों पर आधारित विशेष खंडों को भी दर्शकों ने सराहा। वहीं वेव स्टॉक बाजार का समापन भी हुआ, जहां डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सहयोग एवं वैश्विक साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की।
2: And let's move towards Bengaluru. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar described the Mekedatu project as the heart of South India, stating that it would benefit both Karnataka and Tamil Nadu while addressing Bengaluru's growing drinking water needs yesterday. Speaking after voting in the Legislative Council elections at Vidhan Sabha, he said the proposed reservoir is meant solely for drinking water supply and power generation and not for irrigation. Not a single bucket of water will be used for irrigation. Karnataka will continue to release Tamil Nadu's allocated share of 177 TMC of Kaveri River, he added. And Minister of Greater Bengaluru Development, Karnataka, Krishna Bhaire Gowda, announced the release of a special grant of 2,000 crore rupees for the development and upgradation of ward roads across 5 municipal corporations under the Greater Bengaluru area. Speaking after a meeting on solid waste management, the minister said the funds will be used to repair and asphalt damaged ward roads, excluding major arterial and sub-arterial roads. Officials have been directed to identify deteriorated roads, prepare estimates, invite short-term tenders and begin work immediately.
0: और कोलकाता की ओर चलते हैं तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में आयोजित दौड़ से ध्यान कार्यक्रम योग मैराथन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने हॉक स्ट्रीट से योग मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताते हुए इसके महत्व पर बल दिया।
2: And about Hyderabad, Indian Institute of Technology, IIT Hyderabad, recorded its strongest performance yet in the QS World University Rankings 2027, climbing 76 places to global rank 588 from 664 last year. The institute's overall score rose to 28.

0: 8.7, placing it ahead of 61% of universities worldwide, up from 55.9% in 2026. The accent was driven by research impact, with IIT Hyderabad ranked 123 globally for citations per faculty at a score of 86.8, up 7 places. The institute also improved in academic reputation, employer reputation, employment outcomes, and sustainability.
1: और तन्वी, अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो राजधानी दिल्ली में आज बारिश के साथ आंधी आने की संभावना है। बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई की बात करें तो आज मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
0: Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The temperatures are expected to range between the minimum 29 degrees and maximum 38 degrees. Bangalore is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 22 degrees, while the maximum may reach 29 degrees. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or even dust storm. Temperatures are expected to range from 27 degrees to 38 degrees Celsius. And moving towards our next segment, let's talk about 19th of June. How is this particular day special?
1: तन्वी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज के दिन की विशेषता के बारे में श्रोताओं को बताते हैं। श्रोताओं, कभी कभी जागरूकता ही सबसे बड़ी दवा बन जाती है। एक सही जानकारी न केवल किसी बीमारी को पहचानने में मदद करती है, बल्कि कई जिंदगियां भी बचा सकती है। इसी उद्देश्य के साथ हर वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस का उद्देश्य लोगों को सिकल सेल रोग के प्रति जागरूक करना और समय पर जांच एवं उपचार के महत्व को समझाना है। ये एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार के बजाय हंसीय यानी सिकल के आकार की हो जाती हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव प्रभावित होता है और रोगी को बार बार तेज दर्द, एनीमिया, संक्रमण तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। विश्व सिकल सेल दिवस हमें ये संदेश देता है कि समय पर जांच, सही जानकारी और सामूहिक जागरूकता के माध्यम से न केवल इस बीमारी की पहचान आसान बनाई जा सकती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसके गंभीर प्रभावों से बचाया जा सकता है।
0: And after listening to the importance of the World Sickle Cell Day, let's talk about the different years and 19th June. How are these two connected? Let's talk about the year 1846, the first officially recorded baseball game played under modern rules took place between the New York Knickerbockers and the New York Nine in Hoboken, New Jersey.
1: 1862 में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने सभी अमेरिकी क्षेत्रों में गुलामी पर प्रतिबंध लगा दिया था।
0: In 1865, Union General Gordon Granger announced the end of slavery in Texas, a day now commemorated as Juneteenth.
1: और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिलीपीन सागर की लड़ाई शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी नौसेना को एक निर्णायक जीत मिली।
0: Let's go a little back. In 1910, the world's first Father's Day was celebrated in Spokane, Washington, USA. And in 1963, Soviet cosmonaut Valentina Tereshkova returned safely to Earth after completing her historic space mission.
1: और 1966 में आज के दिन बाल ठाकरे द्वारा मुंबई में शिवसेना पार्टी की स्थापना की गई थी।
0: In 1981, India successfully launched Apple. Apple is the short form of Ariane Passenger Payload Experiment, its first indigenous experimental communication satellite.
1: वहीं 2017 में अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने काबुल में पहले अफगानिस्तान भारत एयर कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिससे दोनों देश

0: के बीच एक सीधा हवाई व्यापार मार्ग स्थापित हुआ। और श्रोताओं, अब आज के दिन से जुड़े उन अहम नामों की बात करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी। तेलुगु सिनेमा में जिन्हें हास्य ब्रह्मा यानी कॉमेडी के ब्रह्मा कहा जाता है, वे थे जंध्याला सुब्रमण्यम शास्त्री, जिन्हें सब प्यार से सिर्फ जंध्याला कहते थे। 25 साल के अपने करियर में उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में निर्देशित की और 300 से अधिक फिल्मों के संवाद लिखे। संकराभरणम, अहन्नाल पेलंता और विवाह भोजनबू जैसी उनकी फिल्में तेलुगु सिनेमा की क्लासिक मानी जाती है। उन्होंने ब्रह्मानंदम, राजेंद्र प्रसाद और कोटा श्रीनिवास राव जैसे दिग्गज हास्य कलाकारों को तेलुगु सिनेमा में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें 3 नंदी पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 19 जून 2001 को महज 50 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, ठीक उसी साल जब उन्होंने फिल्म उद्योग में अपना रजत जयंती वर्ष पूरा किया था।
1: And the next person in our list is James Gandolfini. Today is his death anniversary. An American actor, he was best known for his portrayal of Tony Soprano, the Italian-American mafia crime boss in the TV series The Sopranos, which starred from 1999 to 2007. For this role, he won 3 Primetime Emmy Awards, 5 Actor Awards and 1 Golden Globe Award. His role as Tony Soprano has been described as the greatest and most influential performance in television history. Let's hear some inspirational words by him.
2: Life is short. Try to do something new every day. Dance. Try to dance as much as you can. Try to connect to the silence of the sea. And whenever you can, try to give your body a good rest. And once in a while, try to surprise an old friend.
3: I'm sorry.
2: I know. Try to exercise on a regular basis. A healthy body is a healthy mind. And learn to appreciate art. Try new things. And yes, it will change your life.

0: James Gandolfini. He was featured in numerous films, be it True Romance, Get Shorty, Crimson Tide, A Civil Action, The Last Castle, Romance and Cigarettes, Where the Wild Things Are, Zero Dark Thirty, Not Fade Away, and many, many more.
1: अब बात एक ऐसे कलाकार की जिनकी आवाज में पूरी एक दुनिया बसती थी, निर्मला वेणु माधव। तेलंगाना के वारंगल में जन्मे वेणु माधव को भारतीय मिमिक्री कला का जनक माना जाता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय मिमिक्री कलाकार बनने का गौरव हासिल किया था। उन्हें 1978 में आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा कला प्रपूर्णा की उपाधि और 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन 28 दिसंबर को उनके शिष्य आज भी विश्व मिमिक्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 जून 2018 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी अनगिनत आवाजें आज भी गूंजती है।
0: And today is the birth anniversary of Raj Chandra Bose, an Indian-American mathematician and statistician best known for his work in design theory, finite geometry and the theory of error-correcting codes, in which the class of BCH codes is partly named after him. He also invented the notions of partial geometry, association scheme and strongly regular graph and started a systematic study of difference sets or to construct symmetric block designs. He was notable for his work along with S.S. Shrikhande and E.T. Parker in their disproof of the famous conjecture made by Leonhard Euler dated 1782 that for number n, do there exist two mutually orthogonal Latin squares of order 4n plus 2.
1: आज पुण्यतिथि है एक ऐसे अफसर की जिन्होंने सरकारी नौकरी को सिर्फ एक पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी माना। गुरु प्रसाद मोहपात्रा। उड़ीसा के साहित्यकार परिवार में जन्मे मोहपात्रा 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी थे। कोविड की दूसरी लहर के सबसे भयावह दौर में जब देश भर में ऑक्सीजन की कमी थी, मोहपात्रा खुद कोविड से पीड़ित होते हुए भी

0: अस्पताल के बिस्तर से देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी करते रहे। उनकी इस असाधारण सेवा के लिए भारत सरकार ने 2022 में उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। तन्वी, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो उनके नाम सिर्फ फाइलों में ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अवसर होते हैं जैसे मोहपात्रा के बारे में जो सदैव लोगों के दिलों में बसे रहते हैं।
1: Absolutely. And these are great personalities that we are talking about. And the next personality we are going to talk about is Zoe Saldana. Today is her birthday, an American actress, the highest grossing lead actor in history. She's the recipient of many accolades, including an Academy Award, a BAFTA Award, two Critics' Choice, a Golden Globe, a SAG Award, and Cannes Film Festival Award. She is also a singer. She's also a trained dancer. So let's just hear one of her songs. She has performed original songs for the Avatar film series.

0: I said, she is a singer, she's a trained dancer. She began her acting career in 1999 with a guest role in Law and Order. And from then, she has not turned back. You must have seen her in multiple movies, be it Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, Star Trek reboot series, and James Cameron's Avatar film series from 2009 till present. Guardians of the Galaxy, Funeral, Out of the Furnace, Missing Link, The Adam Project, and many, many more.
1: हिंदी के पहले मौलिक कहानीकार माने जाने वाले माधव राव सप्रे का जन्म आज ही के दिन 1871 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। एक मराठी भाषा परिवार में जन्मे सप्रे जी ने हिंदी को अपना जीवन धर्म बना लिया। 1900 में उन्होंने छत्तीसगढ़ का पहला हिंदी मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र निकाला, जिसमें उनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई, जिसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध मराठी कृति गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए पत्रकारिता को हथियार बनाया। आज उनकी 125वीं जयंती पर हम उस कलम को नमन करते हैं जिसने हिंदी गद्य की नींव रखी।
0: And well, we are talking about writers, and I also want to talk about another writer, and he is Salman Rushdie. Today is his birthday. An Indian-born British and American novelist, his work often combines magical realism with historical fiction and primarily deals with connections, disruptions, and migrations between Eastern and Western civilizations, typically set on the Indian subcontinent. Salman Rushdie's second novel, Midnight's Children, 1981, won the Booker Prize in 1981 and was deemed to be the best novel of all winners on two occasions that marked the 25th and the 40th anniversary of the prize. So let's hear a short interview of his.
2: It's always been the case, you know, in many parts of the world that dictators fear poets. You know, and it's very strange because writers have no armies. I think they fear alternative versions of the world. Now, I think one of the things about authoritarian rule is it wants to impose its own version of the world to the exclusion of all others.
3: I mean, we have to keep our place.
2: I mean, very little, you know. I always try not to overstate the power of literature. You know, what writers can do, which they are doing, is to try and articulate the incredible pain that many people are feeling right now, you know, and to bring that to the world's attention.
1: श्रोताओं, आज जन्मदिन है आशीष विद्यार्थी की, और इसी मौके पर मैं आशीष विद्यार्थी का मशहूर अन्ना वाला डायलॉग जरूर सुनाना चाहूंगी आपको। मुझे तो ये डायलॉग बहुत पसंद है और शायद श्रोताओं आपने भी ये जरूर सुना होगा। आइए सुनते हैं।
4: तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया काला बना के मुझको गोराई से बनाया। अन्ना से बच के किधर जाने का हा? दुनिया में ऐसा कोई जगह होगा जिधर मौत नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं जिधर अन्ना नहीं पहुंच सकता। मेरा 2 करोड़ का माल एयरपोर्ट में पकड़ाया तू, उसका भरपाई कौन करेगा?
5: करेगा ना?
4: तू करेगा।
5: हाँ।

0: कैसे करेगा?
1: And it's also the birthday of Kajal Agarwal, an Indian actress who works in Telugu, Tamil and Hindi cinemas. So let's hear a beautiful song picturized on her from the film Special 26.
2: Naino mein jaise khwab sa jo tu na ho to pani pani naina.
3: और श्रोताओं, इसी के साथ आज सवेरे में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है कि ये सुबह आपके लिए सकारात्मक रही होगी। तो मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और आपके दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ कीजिए।
1: नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून, ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
6: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब

0: वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन पेरिस मैं इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक

0: विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी

0: साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में

0: मुक्त भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार। निक्षय

0: इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ஒன்று வேகஹர்ட்ஸ் எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के

0: बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
1: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमराए।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वह समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वह फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमरा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को अप्रासंगिक और मौजूदा समय के प्रतिकूल बताया। भारत ने कहा कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग से होने वाले लाभ नहीं उठा सकता। परिषद के 62वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की सचिव अनुपमा सिंह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों को बार बार उठाने के पाकिस्तान के प्रयास की आलोचना की। सुश्री अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत के पक्ष से दुनिया भली भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत पर दावे करने के बजाय अपनी आंतरिक चुनौतियों के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर आरोपों और संदर्भों को खारिज करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था और वो हमेशा रहेगा। सुश्री अनुपमा सिंह ने कहा कि एकमात्र अनसुलझा मुद्दा भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा और उनकी वापसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर में हो रही घटनाओं से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है, जहां हाल के हफ्तों में विरोध प्रदर्शन और अशांति तेज हो गई है। पाकिस्तान में पिछले बुधवार को उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के गुरुद्वारे में एक सेवादार दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पेशावर से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मरदान के में हुई। पुलिस के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने गुरुद्वारों के अंदर गोलीबारी की, जिसमें जगन्नाथ और उनकी पत्नी अस्मा वंती की मौत हो गई। इस हमले से पता चलता है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ कितना सक्रिय है। कट्टरपंथी हिंदुओं, सिखों तथा ईसाइयों पर हमला करते रहते हैं और जबरन धर्मांतरण कराते हैं, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों को अत्यधिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के

बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ लगभग 4 महीने तक चले संघर्ष के बाद हुए शांति समझौते के एक दिन बाद ये घोषणा की। इस कदम से ईरान के समुद्री और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाजों की आवाजाही सुगम होने की उम्मीद है। यूक्रेन ने रूस से एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। ये एक सप्ताह में ऐसा दूसरा हमला है। रूस के रोस्तोव

है रूस के रोस्तोव क्षेत्र में अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि शहर के दक्षिण पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित मॉस्को तेल शोधन संयंत्र पर कई ड्रोन ने हमला किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने 555 यूक्रेनी ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाले नए नियम को मंजूरी दे दी है। डिजिटल क्षेत्र में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया ये व्यापक कदम है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या संचालित करने की अनुमति नहीं होगी, न ही उन्हें पोस्ट करने, टिप्पणी करने, सामग्री साझा करने या सार्वजनिक समूह में शामिल होने जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। 15 से 16 वर्ष की आयु के उपयोगकर्ताओं को केवल सख्त सुरक्षा उपायों के तहत सीमित उपयोग की अनुमति होगी। फीफा विश्व कप में कल ग्रुप ए में मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया ने 1-0 से पराजित कर दिया। ग्रुप बी में कनाडा ने कतर को एक तरफा मैच में 6-0 से हरा दिया। कनाडा की जोनाथन डेविड ने 3 गोल किए। इससे पहले कल अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप ए में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के लिए नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। हॉकी में भारत ने आज FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली से होगा। भारत ने चीन में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग चीन को 3-1 से हराया। भारतीय टीम कल फाइनल में मेजबान चीन ए और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता के साथ खेलेगी। इससे पहले भारत ने चीन की दूसरी रिजर्व टीम बी को क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हराया। सोशल मीडिया पोस्ट में हमलों को रूस द्वारा ये। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अप्रासंगिक बताया और आतंकवाद प्रायोजित करने के लिए उसकी कड़ी निंदा की। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: சுகமான ராகங்களை ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்து வருகிறது எஸ் ஜானகி குரலில் மோகமுள் படப்பாடல்.

0: சுகமான ராகங்கள் கேட்டு ரசித்தோம். மீண்டும் திரைசே பாடல்கள் 11:10 கேட்கலாம். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அன்று.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का स्पष्ट संदेश था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: पारिस मैं इसे सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमराए।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को

0: औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार के वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मणिपुर में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का व्यापक तलाश अभियान जारी है। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न भूमिगत संगठनों के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक अपहृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिहा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली है। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्री राहुल गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said, "There was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade."
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par lambe samay tak bharosa kiya ja sake. और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कंट्री इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स दैट विल ड्राइव ग्रोथ इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशंस टू कम। India has strongly criticized Pakistan at the United Nations Human Rights Council UNHRC and called the Indus Waters Treaty outdated and unsuited to present-day realities. Speaking at the 62nd session of the UNHRC, First Secretary at the Permanent Mission of India to the United Nations, Anupama Singh, said that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship.
3: Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed. A treaty negotiated in 1960 cannot be treated as a perpetual entitlement, which is insulated from accountability, detached from present-day realities, and

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने

0: மெல்லிசை பாடல்கள் கேட்டோம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा

0: कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important.

0: concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की पांच दिन के सफल यात्रा संपन्न श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है माई गोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इसका इलाज संभव है
2: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है दूसरा जाकर स्क्रीनिंग करके समय रहते

0: योग की पहचान करना है। तीसरे प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
0: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो

0: ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
2: Our position on Indus Water Treaty is well known.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి ఢిల్లీ నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే ప్రియాంక అరోడా. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है. फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एवियां में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया. उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नव प्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए. स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे. श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा. उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है. राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी. राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है. उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है.
2: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है. मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है. दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है. तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है. नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है. उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है.
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए. वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है. क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है.
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है. सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का

0: frontiers of Tawang to the sacred city of Dwarka in the west. The ministry said that apart from air warriors and families, school children and NCC cadets will also participate in yoga being organized at various Air Force stations across the country. International Day of Yoga is celebrated on the 21st of June across the globe. And that is the end of this news bulletin.
1: நேரம் 4:10 ஆகாஷ்வாணி.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: தேநீர் நேரம் நிகழ்ச்சியை கேட்பதற்கு முன்
3: நமஸ்கார், மேன் ஹூ கைலாஷ் கேர் और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय श्री विजयपुरम कार्यपालक अभियंता सिविल के पद के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पद आरंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट andamannicobar.gov.in या apwd.and.nic.in। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव पद के लिए 1 सदस्य की रिक्ति भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निहित पात्रता शर्तें और अन्य विवरण आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर dopt.gov.in। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। महाप्रबंधक AHL, प्रबंधक विधि, फार्मासिस्ट दवा खरीद, इन सभी पदों के लिए आयु सीमा रहेगी 45 वर्ष। सभी पदों के लिए एक एक रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड की वेबसाइट अथवा www.upmsc.in। मुंबई पत्तन प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। मरीन इंजीनियर पायलट अनुबंध पर तथा योजना 1 अथवा 2 के तहत पायलट अनुबंध के आधार पर। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ TGT संस्कृत के एक पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र, योग्यता, नियम और शर्तों के लिए देखिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट sschittorgarh.edu.in। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कैंपस निदेशक के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.imu.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार करिश्मा, एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू आवर डियर लिसनर्स ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एंड एज करिश्मा

0: just spelt out the details. The next 30 minutes, listeners, are going to be packed with news, discussion segment, which is called Dateline India. There are going to be some reports, capsules, and of course, towards the end of the program, we shall together flip the pages of history to see what makes this day, that is 19th of June, so important. All this over the next 30 minutes. Let's begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia.
1: Pradhan Mantri Modi aaj Nayi Delhi mein Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat 2400 crore rupaye ki protsahan rashi vitrit karenge.
0: President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target.
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा.
0: इंडिया कॉल्स इंडस वाटर्स ट्रीटी आउटडेटेड एट यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल आल्सो स्लैम्स पाकिस्तान फॉर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म.
1: और मैक्सिको दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी.
0: And listeners, as we promised you at the outset of the program, time now for our segment, which is called Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. Today, we will be focusing on International Sickle Cell Day and National Reading Day. Listeners, today we are talking about an important global health observance, International Sickle Cell Day, which is observed every year on June the 19th.
1: बिल्कुल सही कहा. और श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र ने सिकल सेल डिजीज, जिसे अक्सर SCD भी कहा जाता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए जांच, इलाज और देखभाल की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के मकसद से इस दिन को मान्यता दी है.
0: द थीम फॉर दिस ईयर इज क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल केयर. This theme emphasizes providing equal access to treatments regardless of geographical location or economic status.
1: और हम में से कई लोगों ने शायद ये नाम पहले सुना हो या नहीं भी सुना हो, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि सिकल सेल बीमारी अक्सर असल में होती क्या है. तो आइए इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि सिकल सेल बीमारी है क्या.
0: Well, Karishma, sickle cell disease is an inherited blood disorder. Normally, red blood cells are round and move easily through blood vessels, but in SCD, these cells become crescent-shaped or sickle-shaped, and because of their shape, they can block blood flow, causing severe pain, infections, fatigue, and serious health complications.
1: बिल्कुल. और यह जीवन भर रहने वाली बीमारी है, लेकिन सही मेडिकल देखभाल और समय पर बीमारी का पता चलने से इस बीमारी से लोगों को बचाया भी जा सकता है, ज़्यादा स्वस्थ और बेहतर ज़िंदगी भी वो जी सकते हैं. तो सिकल सेल बीमारी संक्रामक नहीं है, यह माता पिता से जीन के जरिए मिलती है.
0: वेल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर, बिकॉज अवेयरनेस हेल्प्स रिड्यूस मिसकंसेप्शंस एंड स्टिग्मा. Well, you know, one of the biggest challenges is that many people are diagnosed late or don't have easy access to specialized healthcare.
1: और इसलिए जागरूकता अभियान इतने ज़रूरी हैं. ये शुरुआती जांच, जेनेटिक काउंसलिंग और समय पर मेडिकल मदद को बढ़ावा देते हैं. ये समुदायों को इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और इससे जूझ रहे लोगों का साथ देने में भी मदद करते हैं.
0: इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, व्हिच फोकसेस ऑन वाइड स्प्रेड स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग फॉर एट रिस्क पॉपुलेशंस. द मिशन एम्स टू इम्प्रूव द केयर ऑफ ऑल sickle cell disease patients for a better future and to lower the prevalence of the disease through a multi-pronged coordinated approach towards screening and awareness strategies.
1: और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना भी की.
0: द प्रेसिडेंट सेड द स्टेट हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन सेवरल फ्रंट्स अंडर द मिशन.
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की

0: सकती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
1: The president noted that one of the key goals set at the launch of the national mission in 2023 was large-scale screening, and it is a matter of satisfaction that the target has been achieved ahead of schedule.
0: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
2: तो कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत लगाई गई एक विशेष प्रदर्शनी का भी दौरा किया। इस प्रदर्शनी में सिकल सेल बीमारी की रोकथाम, जांच और इलाज से जुड़ी विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया।
1: As we observe International Sickle Cell Day today, let's remember that awareness, compassion and support can make a real difference.
2: और चाहे बीमारी के बारे में हमें जानना हो, हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए बढ़ावा देना हो, प्रभावित परिवारों की मदद करनी हो या फिर सही जानकारी फैलाना हो, हर कदम मायने रखता है।
1: And of course, there is no doubt that together we can help create a world where people living with sickle cell disease receive the care, understanding and opportunities they deserve.
2: तो श्रोताओं, बढ़ती हुई जागरूकता, रणनीतिक स्क्रीनिंग पहल और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के तरीकों के जरिए मामलों की पहचान करने, देखभाल प्रदान करने और 2047 तक सिकल सेल डिजीज को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर खत्म करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: And as these efforts continue to expand across different states and age groups, they reinforce India's resolve to enhance healthcare outcomes and promote well-being among its diverse population, particularly in tribal and high prevalence areas. Well, let's go on to the next topic of deliberation, Karishma, and that is about the National Reading Day.
2: Welcome.
1: Read and grow. Let reading become a habit and knowledge a way of life, said the great P.N. Panikkar. Today, we are also celebrating a day that reminds us of the incredible power of books and learning.
2: तो बिल्कुल सही कहा आपने, आज 19 जून को यानी कि आज के दिन भारत राष्ट्रीय पठन दिवस मना रहा है, जिसे नेशनल रीडिंग डे भी कहा जाता है। यह दिन पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और पुथुवायल नारायण पड़िक्कर के शानदार योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है, जिन्हें प्यार से भारत के पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी माना जाता है।
1: सो फ्रेंड्स, वेदर यू आर अ फैन ऑफ नॉवेल्स, बायोग्राफीज, कॉमिक्स, मैगजीन्स और and audiobooks, today is all about celebrating the joy of reading. And of course, it has something to do with P.N. Panikkar, but tell us more.
2: बिल्कुल, तो क्या आपने कभी सोचा है कि नेशनल रीडिंग डे यानी कि 19 जून को ही क्यों मनाया जाता है? अगर इसके बारे में बात करें तो पीएन पनिक्कर एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिनका मानना था कि शिक्षा और किताबों तक पहुंच समाज में बदलाव ला सकती है। उनकी कोशिशों ने खासकर केरल राज्य में एक बड़े लाइब्रेरी आंदोलन को प्रेरित किया था।
1: His dedication led to the establishment of one of Kerala's earliest public library initiatives in the year 1945 and encouraged communities to make books accessible to everyone.
2: और 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह समारोह की शुरुआत की थी, जिससे पठन दिवस मनाने की परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली।
1: Imagine creating a movement that inspires generations to read.
2: और पढ़ने में हमें सिर्फ परीक्षा पास करने में ही मदद नहीं मिलती, बल्कि इससे हमारी शब्दावली बेहतर होती है, याददाश्त मजबूत होती है, एकाग्रता बढ़ती है और दुनिया के बारे में हमारी समझ का दायरा भी बढ़ता है।
1: And of course, I'd like to add to this list, Karishma, that reading can take us on adventures without ever leaving our homes. Reading is a wonderful habit. Let's hear from a few children as they share their thoughts on reading.

0: Vihan Durgapal from Standard 6. You know, usually whenever I get a book, I just finish it in 2 or 3 days and then I'm bored and then I ask for more books. But and at home when I'm usually reading, so I get so engrossed, I don't really keep track of time. So I just finish one book in 60 minutes. So after that I get bored and then I ask for more books.
1: My name is Daksh. I'm in 6th grade. Reading about space is my hobby. I also read about engineering and other stuff. I started reading about history now more, and I read about how things work because I'm curious about how things work.
2: Wow, Karishma, that sounds so interesting. The younger generation so much into reading.
3: बिल्कुल आपने सही कहा. और राष्ट्रीय पठन दिवस नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालने और व्यक्तिगत विकास पर इसके सकारात्मक प्रभाव के महत्व को भी उजागर करता है. पढ़ने से शब्दावली बढ़ती है, भाषा और बातचीत के कौशल में सुधार होता है, और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि एकाग्रता बढ़ती है, तो ये जो बच्चे बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना.
2: एब्सोल्युटली, वेरी करेक्टली सेड Karishma. एंड रीडिंग इज सच अ हैबिट दैट इट स्टिम्युलेट्स इमेजिनेशन, creativity, critical thinking, while expanding knowledge about different subjects, cultures and perspectives. By encouraging people of all ages to read, the National Reading Day promotes lifelong learning, academic excellence and informed citizenship. The day also serves as a reminder of the valuable role that books and libraries play in shaping educated, aware and empowered communities.
3: बिल्कुल, और एक किताब हमें नए विचारों, संस्कृति और नजरियों से भी परिचित करा सकती है.
2: So here's the challenge. Spend at least 20 minutes reading a book of your choice today.
3: और अगर आप पहले से ही नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो क्यों ना अपनी पसंदीदा किताब किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को रेकमेंड करें.
2: A very great idea, Karishma. Reading becomes even more enjoyable when shared with others.
3: और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
2: Karishma, let's first go to Karnataka, where Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had inaugurated a state-of-the-art incubation center at IIT Dharwad last year in October to accelerate biotechnology, deep tech and new gen technology innovations. The incubation center is helping promote startups and entrepreneurship in North Karnataka. We have some more details on this from our correspondent.
4: IIT Dharwad in North Karnataka has a state-of-the-art incubation center started with the combined support of MP Lads funds of over 5 crore rupees contributed by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Another 5 crore rupees was funded by the Biotechnology Industry Research Assistance Council. The incubation center is also known as Dharti Bionest Incubation Center. While speaking at a session during the recently held CSIR Rice Conclave in Bengaluru, the associate Dean of the Entrepreneurship and Dharti in IIT Dharwad, Professor Amar Keshav Gaonkar, explained the role played by the incubation center in mentoring young innovators and entrepreneurs eager on venturing into startups.
5: If the student comes with certain idea and if we found out the idea is really viable, so what we assign a mentor to that particular student, and that mentor is a faculty who is expert in that particular domain. We provide certain funding also, and we see there are some success stories which are coming at IIT Dharwad, and you will come to know in another 2 or 3 years there are wonderful startups that will be coming.
4: Professor Gaonkar says that IIT Dharwad Dharti Incubation Center fuels the growth of startups and entrepreneurs, turning cutting edge research into real world products, transforming ideas into a real world impact. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
3: और कर्नाटका के बाद अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां सरकार पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है. इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है, जो पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी.
6: हिमाचल प्रदेश में पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है. ये नीति चराई प्रबंधन व्यवस्था में सुधार कर उसे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाने की दिशा में एक

0: महत्वपूर्ण कदम है। ये नीति पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करते हुए राज्य में एक समावेशी टिकाऊ और सशक्त पशुपालन अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी। इस महत्वाकांक्षी नीति के अंतर्गत अब पारंपरिक और कठोर प्रतिबंधों के स्थान पर वैज्ञानिक और लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। नीति में जिम्मेदार चराई को घास भूमियों की उत्पादकता बनाए रखने, मिट्टी में कार्बन भंडारण बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण का प्रभावी माध्यम माना गया है। इस नीति के अंतर्गत पशुपालन विभाग के सहयोग से वन विभाग एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा, जिसमें अगले 6 महीने के भीतर पशुपालकों को अपना नाम, पता, पशुओं की संख्या, चराई मार्ग और पड़ाव स्थलों का पंजीकरण करवाना होगा। इस प्रणाली के माध्यम से पशुपालकों की जानकारी के आधार पर आधुनिक विधि से हिम परिवार और भारत पशुधन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी पहचान और विवरण का सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा। इस नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि उन पारंपरिक पशुपालकों को भी मान्यता दी जाएगी जो वर्षों से बिना किसी औपचारिक अनुमति के चराई कार्य करते रहे हैं। नीति के अनुसार पारंपरिक चरवाहों, जिन्हें पोहाल कहा जाता है, को भी आधिकारिक रूप से राज्य पोर्टल में शामिल कर उनकी सुरक्षा और आजीविका को संरक्षण दिया जाएगा। पारंपरिक चराई विरासत को आधुनिक विकास परियोजनाओं से सुरक्षित रखने के लिए नीति में पारंपरिक प्रवासी मार्गों, जल स्रोतों और पड़ाव स्थलों के संरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। इन सभी मार्गों को विशेष मानचित्रण परियोजना के तहत जियो टैग किया जाएगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं प्रभा शर्मा।
1: Karishma, we were just discussing about, you know, all the good things about reading. We spoke about the National Reading Day too. Similarly, theatre is another ground where creativity, imagination and expression blossoms. So Manipur, renowned for its rich cultural heritage and performing arts, has witnessed the celebration of the 52nd Shumang Leela Festival in Imphal recently. Shumang Leela, the traditional courtyard theatre of Manipur, holds a special place in the cultural life of the state for its powerful storytelling, social messages and lively performances. The festival brought together theatre artists, cultural enthusiasts and audiences in a vibrant celebration of Manipuri dramatic art. Details on this from our correspondent.
2: The 52nd Shumang Leela Festival was held from 26 May to 16 June 2026 at the Iboyama Shumang Leela Sanglan, organized by the Manipur State Kala Academy. The governor of Manipur, Ajay Kumar Bhalla, graced the inaugural function as the chief guest, while Minister Khuraijam Lokal Singh attended the program as the president. Addressing the gathering, Governor Ajay Kumar Bhalla highlighted the rich culture and heritage and resilience of Manipur and stressed the importance of preserving indigenous art forms for future generations. He noted that Shumang Leela is not merely a form of entertainment, but a powerful medium for social awareness, cultural identity, and communal harmony, Sri Bhalla said.
3: Another important feature of Shumang Leela is that its themes have evolved with time. From stories rooted in mythology, folklore and history, it has moved on to address contemporary issues and other social concerns. In doing so, it has kept pace with changing times while preserving its relevance.
2: The festival attracted large gatherings of theatre lovers and cultural enthusiasts from different parts of Manipur. 27 renowned Shumang Leela troupes presented performances based on social themes, history, humor, and modern values, reflecting the richness of Manipuri society and tradition. The 52nd Shumang Leela Festival concluded on 16 June. Sanalaibak Nachom artists bagged first position, while the Shanghai Artist Association secured second position in the competition. Prizes will be distributed during the inauguration ceremony of 53rd Shumang Leela Festival to be held next year. Jijay Thakchom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
1: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की, जिसमें आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। कल रात अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा।
4: In cricket, seamer Harshit Rana has been added to the Indian squad for the third and final one-day international against Afghanistan, which will be played

0: वाले पहले कलाकारों में गिने जाते हैं और उन्हें भारतीय मिमिक्री आंदोलन का अग्रदूत भी माना जाता है। वेणु माधव अपनी आवाज की अद्भुत क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। वे नेताओं, अभिनेताओं, पक्षियों और पशुओं की आवाजों से इतनी सटीक नकल करते थे कि श्रोता आश्चर्यचकित रह जाते थे। उन्होंने देश विदेश में हजारों मंचों पर प्रस्तुतियां दी और भारतीय मिमिक्री कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मिमिक्री को एक सम्मानित कला के रूप में स्थापित करना था और इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था।
1: Listeners, we are also paying tributes today to Ramanand V. Raghavan, a highly respected master of the Mridagam. He was a key initiator for the Cleveland Tyagraj Aradhana. We have a rendition for you.

0: श्रोताओं, इसके साथ ही आज भारतीय सिनेमा के अग्रणी फिल्मकार भगवती प्रसाद मिश्रा की पुण्यतिथि है। वे भारतीय फिल्म उद्योग के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण निदेशकों और पटकथा लेखकों में शामिल थे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम विशेष रूप से आलम आरा से जुड़ा हुआ है, जिसे भारत की पहली बोलती फिल्म माना जाता है। इस फिल्म ने भारतीय फिल्म उद्योग में एक नए युग की शुरुआत की और मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों की ओर परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। उस दौर में तकनीकी चुनौतियों के बावजूद उनका योगदान भारतीय सिनेमा के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ।
1: We are paying tributes today to Raj Chandra Bose, Indian mathematician and statistician, born at Hosangabad in Madhya Pradesh. Bose made many valuable contributions to the subject. He discovered new codes for telecommunication. In the year 1976, America's highest honor to a scientist came to Bose as he was elected fellow of the US Academy of Sciences.
0: और इसके साथ ही आज हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्माता, निदेशक और लेखक सोमू मुखर्जी की जयंती है। आपको बता दें कि वे हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित मुखर्जी परिवार के सदस्य थे। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया और फिल्म उद्योग में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनके चर्चित फिल्मों में एक बार मुस्कुरा दो, नन्हा फरिश्ता, लव इन बॉम्बे शामिल हैं और वे प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा के पति और अभिनेत्री काजोल के पिता हैं।
1: Listeners, we are remembering today the great Ustad Nasir Zahiruddin Dagar, a legendary Draupad vocalist belonging to the historic Dagar Gharana. Alongside his brother, he was part of the famous junior Dagar brothers duo that kept the ancient classical vocal art of Draupad alive on global stages.

0: ऑन दैट क्लासिकल नोट इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू से गुडबाय करिश्मा।
1: तो इसी के साथ श्रोताओं अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा और सरबजीत कौर को नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை டாக்டர் எஸ் சுந்தர் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். ஸ்ரேயா தேவ்நாத் அவர்கள் வயலின், கே ஜெகதீஷ் அவர்கள் மிருதங்கம். தொடர்வது செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की. अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है. इनमें लगभग 30% महिलाएं हैं. योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं. इससे पहले श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1000 करोड़ रुपए था.
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है. इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ था. इस समय हम अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं. यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है.
1: प्रधानमंत्री मोदी इस समय पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. आइए सुनते हैं उनका संबोधन.
3: दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं.

0: उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्धनों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। भारत की विदेश नीति ने देश को विश्व बंधु के रूप में स्थापित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुशल स्टेशन प्रबंधन के लिए स्टेशन मास्टरों को सशक्त बनाने संबंधी व्यापक उपायों की समीक्षा की है। रेल मंत्री ने कल वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेशन मास्टरों के प्रतिदिन के कार्य और उनके प्रबंधन को सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा की गई। इसमें मल्टी ट्रैक और उच्च घनत्व के खंडों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। अश्मिता चालिहा मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। सेमीफाइनल में कल अश्मिता का सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: नेरम 6:05 आकाशवाणी।
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
2: இனி இந்த அலைவரிசையில் இன்றும் நாளையும் இடம்பெறவுள்ள நிகழ்ச்சிகள். இன்று மாலை 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லி அஞ்சல், 7:10 இளைய பாரதம். கற்றலுக்கு துணை நிற்கும் கைபேசி. கலந்துரையாடலில் பங்கேற்பவர்கள் எம் தினேஷ், கே திலகவதி, என் திவ்யா ஆகியோர். 7:50 செய்தி கதமும், 8:10 திரைகானம். இன்றிரவு 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 கரண்ட் அஃபேர்ஸ், 10:10 விஸ்வதர்ப்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ். இவை அனைத்தும் டெல்லி அஞ்சல். 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், 11:10 மத்திய அரசின் 12 ஆண்டு நிறைவு குறித்து பல்வேறு கருப்பொருட்களிலான சிறப்பு கலந்துரையாடல், இருமொழி நிகழ்ச்சி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல். பங்கேற்பவர் சுற்றுச்சூழல், வனத்துறை மற்றும் காலநிலை மாற்றத்திற்கான மத்திய அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் அவர்கள். 11:45 திரைகானம். நள்ளிரவுக்கு பின் 12:10 இரவின் மடியில், 1:10 நினைவில் நின்றவை, 2:10 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, 3:10 இனியராகம், சம்பு பிரசாத் பவார் அவர்களின் பாட்டு. அதிகாலை 4:10 பொங்குமங்கலம், மாம்பலம் எஸ் சந்தானம் அவர்களின் நாகஸ்வரேசை, திருவல்லிக்கேணி எஸ் சாந்தகுமார் அவர்கள் தவில். 5:10 புலரும் பொழுது, 6:10 தேனிசை, 7:25 திரையிசை, 7:30 ஆட்சவேரே

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर भी नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे। विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: Benchmark domestic indices end 5-day rising streak. Sensex drops over 600 points. Nifty holds 24,000 level. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana and global crude oil prices rise.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। घरेलू शेयर बाजार में लगातार पांच दिनों की बढ़त का सिलसिला टूटा। सेंसेक्स 607 अंक लुढ़का, वहीं निफ्टी 24,000 के स्तर पर बंद हुआ। और कच्चे तेल के वैश्विक दाम बढ़े।

0: advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Prime Minister Narendra Modi disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana PMVBRY at a function in New Delhi today. Addressing the gathering, Prime Minister Modi highlighted that PMVBRY marks a significant step towards empowering India's youth and enabling the ecosystem for employment-led growth.
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
0: The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. More than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under PMVBRY, of whom nearly 30% are women. PMVBRY is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, the first-time employees are eligible for an incentive up to 15,000 rupees, providing crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to 3,000 per month per additional employee, thereby encouraging sustained job creation.
2: पुनीत, 2004 से 14 तक की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ रोजगार की दर थी, और अगर हम देखते हैं 2014 से लेकर के 24 तक तो ये 17 करोड़ अब आंकड़े उभर कर आए हैं. आप इस ग्रोथ स्टोरी को कैसे देखते हैं?
3: प्राची, देखिए, भारत में यदि पिछले हम 10-12 वर्षों के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो एक पूरी नई कहानी एक तरह से लिखी गई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पहले भारत का जो ग्रोथ इंजन था वो ज़्यादातर सर्विसेज सेक्टर से ग्रो कर रहा था, और उसमें रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज होती थी वो थोड़ी सीमित होती थी. वो एक तो सीमित होती थी एजुकेशन के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे. तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, और जो बाकी जो सेक्शन सोसाइटी थे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती थी, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या स्किल सेट कम होता था. तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी. हमने देखा है कि जो पीछे 10-12 वर्षों से सरकार की नीतियाँ रही हैं, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो उन क्षेत्रों में रोजगार को प्रोत्साहन देने वाली स्कीम्स हैं जहाँ पर पहले अपॉर्चुनिटीज कम थी और भारत को वहाँ पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है. तो इस प्रकार से आप देखें तो ये नंबर्स बढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो एवरेज सैलरी लेवल है उसमें इनकम में इम्प्रूवमेंट हुई है. तो मुझे लगता है ये काफ़ी डिफरेंट स्टोरीज हैं, एक प्रकार से नई एरा है ये एम्प्लॉयमेंट की, और भारत को ज़रूरत है क्योंकि हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और यंग जो सेक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. तो आई थिंक इट इज़ रियली बैडली नीडेड.
0: Puneet, you mentioned about the services sector earlier on. Prachi mentioned about the time period from 2004 to 2014, 10 years. But now you talk about the other things. Clearly, we're a consumption-led economy now, leading to growth and manufacturing, of course. This is one point. The other thing is that Prime Minister often talks about the demographic dividend, right? So we have this workforce, the youth mostly, which were kind of looking for something, you know, in their career to do something. You talk about the lawyers, you talk about the doctors, engineers, software engineers, and all. But what about the other part of the population, the youth, who may not be that fortunate, you know, to have that degree of a software engineer or a lawyer or a doctor? So how significant do you see this Prime Minister Bharat Rozgar Yojana actually contributing to that?
3: So Nishit, this is a very interesting question, and of course a question which really confronted us for many decades. So we had opportunities or employment opportunities for youth in cities,

0: So if you move to a metro, so there was a lot of large scale migration, if you'd see, of workforce from villages in India to the cities. And therefore we had metropolitan cities and tier two cities coming up. But it really created a lot of human cost also for migrant laborers, because first of all they did not get the jobs that they were skilled to do, which they could have done better probably in their villages or in a smaller towns. And therefore I think there was this great gap in India's growth story, or great gap in India's economic development, I would say. Now, as we see, if you look at the way, and particularly if you look at the latest scheme, which encourages startups not only in cities, it encourages startups in villages also. So that is a very important thing. We need to develop employment in rural areas, not only in agriculture. We need to develop employment in rural areas in enterprises. And I think that is what the real story of the scheme is.
1: Puneet, you talk about the startups just now. The Prime Minister concluded his visit to France and at the G7 summit. On the sidelines of that, this Viva Tech Summit, which was the largest technology summit, which encourages the startup ecosystem, and the Indian presence was in just large force over there. This kind of manifests the aspirations of the youth, to bring up the economy, and of course, towards manifesting the vision of Viksit Bharat 2047.
0: Yeah, I would say that it really needs to unleash. We need to unleash this power. There's this huge source of energy, enthusiasm, which is lying with the India's youth. We just need to channelize it. And I think schemes like PMVBRY and these schemes are really important. We earlier had archaic schemes, which gave employment guarantees for digging, ditches in villages. So that is not where India is going to grow. I mean, we need to target employment in areas where India needs
1: करेक्ट
0: economic growth.
2: पुनीत, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की बात कर रहे हैं, तो कैसे हम ये चीज़ इस चीज़ के बारे में बात ना करें कि सोशल सिक्योरिटी कितनी ज़रूरत है उसकी हम आम जनता को. तो सोशल सिक्योरिटी कवरेज में जो बढ़ोतरी हुई है, 25 करोड़ पहले हुआ करती थी और अब 94 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचा है, ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए,
0: ब्राची. देखिए सोशल
2: विशेषकर युवाओं के
0: अपना
2: लिए?
0: युवाओं के लिए
2: जी
0: देखिए, उड़ान युवा भी तभी बढ़ पाते हैं जब उनके पास एक सेफ्टी नेट हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. भारत में बच्चा जैसे ही थोड़ा सा व्यस्क होता था, एडल्ट होता था, कमाई की चिंता उसके माँ बाप को लगती थी और वो किसी भी अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब में वो काम करते थे क्योंकि उनको इमिजिएटली पैसे की जरूरत होती थी. मुझे लगता है सोशल सेफ्टी नेट जो आप जैसे आपने जिक्र किया कि
2: जी
0: 94 करोड़ नागरिकों को ये आज उपलब्ध है,
2: जी
0: इससे उनको ये हिम्मत मिलती है कि वो, क्योंकि उनको मालूम है कि बेसिक खाने पीने जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान की उन्हें अगर चिंता नहीं है
2: जी
0: तो वो ऊंची उड़ान भर सकते हैं. तो मुझे लगता है इसलिए बहुत जरूरी है.
2: बिल्कुल. श्रोताओं, अब आइए रुख करते हैं कि और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट लगातार 5 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला टूटा. सेंसेक्स 607 अंक यानी लगभग 0.8% गिरकर 76,803 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 155 अंक यानी लगभग 0.6% लुढ़ककर 24,013 पर आ गया. वहीं विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 0.2% से अधिक और स्मॉल कैप 100 0.4% से अधिक बढ़े. कारोबार की शुरुआत धीमी रही और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के कारण पूरे सत्र के दौरान बाजार पर दबाव बना रहा. हालांकि ट्रेडिंग के अंतिम आधे घंटे में सूचकांकों ने रिकवरी की, लेकिन अंततः गिरावट के साथ ही बंद हुए.
1: The benchmark domestic equity indices ended lower today, snapping a five-day rising streak. The Sensex shed 607 points, nearly 0.8%, to close at 76,803, while the Nifty fell 155 points, or 0.64%, to settle at 24,013. However, in the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose over 0.2% and the small cap 100 index added more than 0.4%. The markets opened on a weak note and remained under pressure throughout the session, weighed down by heavy selling in IT stocks. Although the indices recovered part of their intraday losses during the final half an hour of trading, the markets ultimately closed in the negative territory.
2: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे ज्यादा घाटे में रहे शेयरों में इन्फोसिस 6.7%, टीसीएस

0: आईटी सेक्टर को कैसा आप कैसा उसका अवलोकन करते हैं?
1: तो प्राची ने एक दुखती नर्व पर इस स्टॉक मार्केट की उस पर आपने हाथ रखा है ये, क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पे चाहे हमारे म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, सभी की बहुत बड़े पहली बात है कि बहुत कॉन्फिडेंस रहा है आईटी सेक्टर पे, बड़ा कैश जनरेटिंग सेक्टर है, स्ट्रांग सेक्टर है। पिछले 25 से 30 वर्षों से हम देख रहे हैं वहाँ प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रेवेन्यूज की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, डिविडेंड की बात करें, तो काफी उम्मीदें वहां रही हैं और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट अभी भी भारतीयों का आईटी सेक्टर में है। और अभी सबके मन में सवाल है कि क्या होगा, क्या वो कंपनियां सर्वाइव करेंगी, ग्रो कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि खुद मार्केट्स इन सवालों का जवाब अभी ढूंढ रही है। पर मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा, देखिए ये जो कंपनियां हैं करीब करीब सभी जो बड़ी कंपनियां हैं, या टीसीएस की बात करते हैं या इन्फोसिस की बात करते हैं, इनका 50 से 60 हजार करोड़ रुपए साल का आज भी प्रॉफिट ये कमाती हैं। इतना बड़ा कैश प्रॉफिट ये कमाती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे भारत की जो आईटी सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत ज्यादा आने वाले समय तक बहुत ज्यादा गिरेगा। डेफिनेटली अभी विश्व के स्तर पर सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा ज्यादातर, और इस वजह से हम सेलिंग देख रहे हैं। पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि सूनर देन लेटर वी विल कम आउट ऑफ दिस।
0: सेंटीमेंट को भी आप देखते हैं कि वहां पर अगर इस तरीके की बातें हुई तो इस वजह से हमारे हमारे यहाँ पर भी
1: बिल्कुल प्राची सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट ड्रिवन था। वहां एक्सेंचर का स्टेटमेंट आया रात को ही जो अमेरिकन एडीआर है लिस्टेड कंपनियों के हमारे, तभी गिर गए थे वो, तो ये बात साफ थी कि आज वहां पर थोड़ा गिरावट आई।
0: एआई के कारण पारंपरिक जो आईटी सेवाएं हैं उनके बिजनेस मॉडल पर दबाव की चिंता अभी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्या ये भी एक कारण में आप गिनते हैं कि आज की गिरावट में ये भी काउंट होता है?
1: ये देखिए मुख्य कारण यही है। अभी हमें ये सच बात है मालूम नहीं है कि क्या असर आएगा एआई का इन कंपनियों के रेवेन्यूज के ऊपर, कितने जरूरतें उनकी सर्विसेज की कम होंगी या उनके प्राइसेस कम होंगे या रेवेन्यूज कट होंगे। कल एक्सेंचर ने अपना रेवेन्यू फोरकास्ट सिर्फ 2% कट किया था और लेकिन उनका जो शेयर था वो 11% तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कितनी, मैं ये कहूंगा जंपी है, मतलब कितना उनको चिंताएं हैं। अभी कुछ मालूम नहीं है हमें, साफ तौर पे नहीं है, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ मुझे अभी भी भारतीय कंपनियां बहुत अट्रैक्टिव लगती है वैल्यूएशन पर।
2: राइट पुनीत, सो हॉट ऑन हील्स ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ इन द यूएस, वी आर ऑल्सो ब्रेस्ड फॉर द लार्जेस्ट आईपीओ कमिंग इन सम टाइम इन द इंडियन मार्केट्स। सो हाउ डू यू सी इफ यू लुक एट द प्राइमरी मार्केट्स व्हिच हैव बीन रियली नॉट डूइंग well in the past 4 or 5 months, if we may say so.
1: So absolutely, I think so far 2026 has been a write-off as far as IPO is concerned. So now we have 2 major IPOs coming in, one by a national and National Stock Exchange of India, which is a well respected large institution, another by another large company, private company. So I think this will really kickstart the IPO mood in the markets. But of course we need to see the performance of the broader markets. If we don't see foreign investors coming back, liquidity doesn't come back from investors. Last month we saw the mutual fund numbers were not very encouraging. We saw some decline in mutual fund numbers. I think it will be some time before these IPOs really hit, because they're still talking about filing documents. So my guess is that we will see these IPOs closer towards the end of the year, and by then my estimate is that the market sentiment will be better, and I think these IPOs will of course help in boosting that sentiment.
2: Right, Puneet, even if you talk about, you mentioned about the other big ticket IPO also following this, the NSE IPO. In fact, if we look at it, you know, the timing of this, you know, the this IPO coming in, you know, for the past 4 or 5 months has been torrid times for the markets. Now, the NSE IPO especially pussyfooting, you know, kind of stealthily kind of coming in at the time, shows signs of the recovery, the green shoots coming up probably.
1: So, interestingly, while the headline indices in India have been very bad, in fact, if you look at compare Indian stock markets to global markets, we have been really underperforming. But if you look at the broader market, the sentiment of the people, that is not so negative. So there is some disconnect here where the headline numbers tell a different story, negative story, but the mood of the market is still not very negative in India. My guess is that if we see some good numbers here, some good IPOs, I'm sure people will be enthused to invest in the markets.
0: आइए श्रोताओं अब रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज एशियाई शेयर बाजार में मिलाजुला रुख रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.4% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.1% से अधिक नीचे आया। वहीं जापान का निकेई 0.3% बढ़ा। इधर चीन, हांगकांग और ताइवान के शेयर बाजार

0: छुट्टी के कारण बंद रहे। बात करें यूरोपीय सूचकांकों की तो यहां भी आज मिला जुला रुख रहा। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 0.3% से अधिक और फ्रांस का कैक लगभग 0.2% नीचे आया। उधर जर्मनी का डैक्स 0.1% से ऊपर कारोबार करता नजर आया।
1: And moving on to the US markets, Wall Street ended higher yesterday, led by gains in the chip stocks. Among the major indices, the Nasdaq composite surged 1.9%, the S&P 500 advanced 1.1%, and the Dow Jones Industrial Average posted a modest gain of 0.1%. Despite the gains, investor sentiment remained cautious amid expectations of a potential interest rate hike later this year. Meanwhile, the markets in the United States will remain closed tonight in observance of a public holiday. Puneet, talking of the US markets, you know, it's so ironical if you look at the chip stocks, you know, chip stocks rising over there, the Nasdaq composite surging 1.9%, and the tech stocks kind of climbing down here in the domestic markets.
2: So clearly this era is the era of AI, and AI is a very different story from IT services. AI is more about chips, about infrastructure, and that is where most of the money is being attracted right now. It's almost like a Pied Piper story, I like to say. But the real story in America really is the interest rate story. Because when the US Fed had the meeting and they said that there might be another interest rate hike, that pushed up the dollar index. If you see, the dollar index went up about 101, it used about 98, it suddenly shot up to 101 dollar index, and along with that the commodities came down. So gold came down very sharply, silver came down very sharply. So the whole idea, markets were looking for an interest rate cut towards the end of the year, because the new Fed chairman came, and suddenly there is this talk of an interest rate hike. I think that has appended the entire market expectation. So the real story, if you ask me, in the international markets in US, is going to be the interest rates rather than AI, etc.
0: लेकिन अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो हमने देखा कि हाल ही के दिनों की बात है कि कॉस्पी और निके ने अपने एकदम उच्चतम स्तर को प्राप्त किया, जबकि अभी इतनी सारी चिंताएं अभी भी हैं एआई को लेकर के चिंताएं, और वो वहां पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं हम पिछड़ रहे हैं?
2: नहीं, देखिए कॉस्पी, और मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, जो कॉस्पी यानी कोरिया का जो बाजार है वहां पर दो कंपनियां ऐसी हैं जिनका वेटेज जो इंडेक्स में है वो 55% है, सिर्फ दो कंपनियों का, और उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भारत के पूरे बाजार के मार्केट कैप से ज्यादा है। ताइवान में सिर्फ एक कंपनी ऐसी है, चिप कंपनी बनाती है, जिसका अकेले का मार्केट कैप पूरे भारत की 7,000 कंपनियों का मिलाकर के उससे ज्यादा है, और उस कंपनी का वेटेज भी इंडेक्स में 50-60% है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हेविली लोडेड एक तरफा वहां पर बाजार में तेजी है। जिस प्रकार से बाजारों ने कैपिटल अट्रैक्ट किया, वहां नुकसान भी हो सकता है। अगर एआई बबल बस्ट होगा तो डेफिनेटली इन बाजारों को आप देखेंगे बहुत नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि इनसे मैं बेंचमार्क नहीं करूंगा। भारत के बाजार बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत मजबूत है, और इन द लॉन्ग टर्म मुझे पूरा विश्वास है कि वी विल फार आउट परफॉर्म मार्केट्स लाइक कोरिया एंड ताइवान।
1: एंड इन सम अदर स्टोरीज, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन बाय 9.98 बिलियन यूएस डॉलर्स टू 671 बिलियन यूएस डॉलर्स ड्यूरिंग द वीक एंडेड जून 12th. According to the Reserve Bank of India, gold reserves slumped by 10.75 billion US dollars to 103.8 billion US dollars. Special drawing rights, that is SDRs, declined 66 million US dollars to 18.69 billion US dollars. The country's reserve position with the International Monetary Fund slipped by 11 million US dollars at 4.81 billion US dollars. Conversely, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased by 846 million US dollars to 544 billion US dollars. Very briefly, Puneet, you know, there is this decline in the foreign exchange reserves, but I'll be coming back to the rupee appreciating, you know. It's been consistently appreciating over the past few sessions. So now this the current market situation, and of course, you know, the IT stocks and the churn happening, you know, in the US, the chip stocks kind of going up. How much of that has a bearing on, you know, on
2: the rupee appreciation in India was direct effect of the RBI policy, which allowed banks to borrow slightly at a higher rate from NRIs abroad. So that, I think, expected to bring in $50 to $70 billion in the next 3-4 months into India. I think that has really played out in here. The fall that we talked about yesterday, just now, is essentially because of revaluation of reserves. See what happens, gold revalues, so, and that shows a decline. Actually, there's no decline in gold reserves. It is just the value of gold vis-a-vis dollar that has gone down in India.

0: So it's not a big change, but I think situation has stabilized a lot vis-à-vis the rupee.
1: Right. And moving on to crude now, the global crude oil prices gained today as follow-up talks between the US and Iran in Switzerland were called off, underscoring lingering uncertainty over efforts to turn an interim agreement into a lasting peace settlement. The Brent crude rose marginally by 0.1% to $79.92 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI crude increased nearly 0.3% to $76.05 per barrel at the time of the last report. So Puneet, oil kind of dilly-dallying, kind of in the doldrums.
0: So everybody seems to be in love with oil, from the president of America to practically everybody across the world. But I think oil is now, if this deal holds through, then I have no reason to believe that oil will shoot up. I think we have surplus oil supply in the world. It should stabilize.
1: Right. And in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading more than 1.5% down at 1,47,320 rupees per 10 grams, while silver was trading 2% lower at 2,33,940 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.5% गिरकर 1,47,082 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और जुलाई अनुबंध वाली चांदी लगभग 2% गिरकर 2,32,943 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी जाते जाते आपसे पुनीत जी, सोने और चांदी के भाव पे।
0: देखिए, जो सोने में हम गिरावट देखी है या कमजोरी देखी है वो खासतौर से डॉलर इंडेक्स बढ़ने से हुई है, क्योंकि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली सोने में और कमी आ सकती है, पर मुझे लगता है कि यही स्टेबलाइज करेगा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और निश्चित के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. The benchmark domestic indices end 5-day rising streak. Sensex drops over 600 points. Nifty holds 24,000 level, and the global crude oil prices rise. And that's all we have in this edition of Market Mantra from all of us here. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को

0: प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया के किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana PMVBRY at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the PMVBRY, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry. He highlighted that under the scheme, around 70 lakh jobs have been created so far.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Defense Minister Rajnath Singh today said that India's domestic defense production has increased from 46,000 crore rupees in 2014 to a record over 1,78,000 crore rupees in the last financial year. He said that defense exports, which registered at only 1,000 crore rupees before 2014, have risen to nearly

0: தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। ये वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। इस प्रोत्साहन योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़।

0: रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्धनों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुँचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने संबंधी सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने आज कहा कि ये निर्णय अनुचित नहीं है, क्योंकि इस ऐप के जरिए बड़ी मात्रा में सामग्री का तेजी से और व्यापक स्तर पर प्रसार किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि सरकार के पास रोक लगाने के कारण पर्याप्त थे और कानून के तहत प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। अश्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा-ह्यून से होगा। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana, PMVBRY, at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the PMVBRY, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability, and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality." He said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry. He highlighted that under the scheme, around 70 lakh jobs have been created so far.
2: प्रधान मंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Defense Minister Rajnath Singh today said that India's domestic defense production has increased from 46,000 crore rupees in 2014 to a record over 1,78,000 crore rupees in the last financial year. He said that defense exports, which registered at only 1,000 crore rupees before 2014, have risen to nearly 40,000 crore rupees due to the growing global demand for indigenously manufactured Indian defense equipment. Mr. Singh was speaking after laying the foundation stone of a state-of-the-art 10,000 ton of aluminium extrusion press at the Ordnance Factory of Yantra India Limited in Ambazari, Nagpur. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrakar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The apex court called for a regulatory body to effectuate the fundamental right to walk on demarcated footpaths It said

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: ஒலித்த அந்த பாடலுடன் திரைகானம் நிறைவு பெறுகிறது.
1: தோள் கொடுப்பதில் தோழனாய், கற்றுக் கொடுப்பதில் ஆசானாய், வழிகாட்டுவதில் சான்றோனாய், சிறியவர் பெரியவர் இளைஞர்கள் பெண்கள் இவர்களின் முன்னேற்றத்தில் உங்கள் அகில இந்திய வானொலி. அனைத்து இயற்கை சீற்றங்களிலும் சிதையாமல் உங்களுடன், அனைத்து இடர்பாடுகளிலும் இடைவிடாமல் உங்கள் சேவையில் அகில இந்திய வானொலி, என்றும் உங்கள் நலனில்.
0: தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
3: भारत दुनिया के सबसे युवा

0: देशों में से एक है। इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy, हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,000

0: 290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
3: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर

0: में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, The PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10

0: Current Affairs. This is Akashvani. In the weekly program Current Affairs, now we bring you a discussion on major outcomes and strategic gains from Prime Minister's six-day Europe visit and the G7 summit engagements. The participants are Prabhu Dayal, former ambassador, and Gulshan Sachdeva, international affairs expert. Moderator is Nishit Kumar.
1: Prime Minister Narendra Modi's six-day diplomatic tour across France and Slovakia, along with the G7 summit engagement in Avignon, successfully placed India at the center of major global discussions. It also marked substantial progress in trade, security and global policy. And to discuss more about it, we are joined in by Mr. Prabhu Dayal, former ambassador, and Professor Gulshan Sachdeva, international relations expert. Welcome to both of you.
2: Thank you.
1: Ambassador Dayal, if we can begin with you, how significant was the visit of Prime Minister Modi to France, Slovakia, and of course the G7 summit, given India's growing economic importance in Europe and its continued engagement with major industrial economies?
3: Prime Minister Modi's European tour to France and Slovakia, alongside his participation in the 52nd G7 summit in Avignon, marks a highly significant milestone in expanding India's economic footprint and strategic partnership across Europe. Now, occurring against the backdrop of the recently finalized India-EU free trade agreement, the tour positions India not just as an external partner, but as a central stakeholder in Europe's technological, industrial, and geopolitical future. So ultimately, this tour demonstrates that both Western European industrial giants like France and Central European manufacturing hubs like Slovakia increasingly view India as an indispensable economic anchor. PM Modi's visit successfully translated India's microeconomic growth into macro-level bilateral pacts.
1: Now let's listen in to Prime Minister Narendra Modi addressing the joint press meet with Prime Minister of Slovakia.
4: हमारे आत्मीयता भरे स्वागत के लिए मैं Prime Minister Fico का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वे अनुभवी लीडर होने के साथ साथ भारत के सच्चे मित्र हैं। भारत स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता का विशेष महत्व रहा है। मुझे खुशी है हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का सुअवसर मिला। मेरी यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है। लेकिन हमारी क्षमताएं विशाल है, हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारे लिए विशेष रुचि के क्षेत्र हैं।
1: Professor Sachdeva, to what extent do the newly established strategic frameworks with France and the historic

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना भेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने ये बात कही। उन्होंने ये बयान तब दिया जब पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू

0: to Switzerland, insisting that the fighting in Lebanon must stop before the talks can take place. U.S. Vice President J.D. Vance also postponed his trip. Israel and Hezbollah later agreed to a ceasefire. A senior U.S. official said negotiators for the U.S. and Qatar worked out the deal with the help from Iran. In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-finals of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun, 21-16, 21-18 in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इजरायल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इजरायल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 6 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है और उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद उन्होंने ये बयान दिया। अनुपम सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। असली मुद्दा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को वापस करना है। लेबनान पर इजरायल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इजरायल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। ये युद्ध विराम आज स्थानीय समय अनुसार शाम 4 बजे से लागू होने वाला है। अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। हालांकि इजरायल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। दक्षिणी लेबनान में जारी संघर्ष के कारण ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा रद्द कर दी है। ईरान ने कहा है कि लेबनान में संघर्ष रुकने के बाद ही वार्ता आगे बढ़ सकती है। सीमा पर सैन्य कार्रवाई को देखते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में कथित आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर रात भर हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
3: मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया और चेतावनी दी कि अफगानिस्तान अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। ये घटनाक्रम दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है। इससे पहले 11 जून को अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के कार्यकारी राजदूत को तलब कर अफगान हवाई क्षेत्र के कथित उल्लंघन पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले करने का भी आरोप लगाया है जिसमें कथित तौर पर 13 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।

0: फॉरेन पॉलिसी।
1: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
0: रिमेन्स अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ स्ट्रगल।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत का एलएनजी टैंकर दिशा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद गुजरात के दहेज बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। ये कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस लेकर आया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम द्वारा संचालित और पेट्रोनेट एलएनजी द्वारा चार्टर्ड ये पोत आज सवेरे दहेज एलएनजी टर्मिनल पर पहुंचा। उम्मीद है कि यह कार्गो पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के बीच देश भर में एलएनजी की उपलब्धता को मजबूत करेगा और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। गुजरात के भरूच जिले में स्थित दहेज भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आयात टर्मिनल और देश के प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का एक प्रमुख केंद्र है। दुबई में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय वाणिज्य दूतावास और दुबई पुलिस की पॉजिटिव स्पिरिट काउंसिल के सहयोग से एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोग, दुबई पुलिसकर्मी, राजनयिक विद्यार्थी और योग प्रशिक्षक शामिल होंगे। प्रतिभागी योगासन, प्राणायाम और ध्यान अभ्यास से संबंधित एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। भारतीय दूतावास ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों और स्वस्थ तथा जीवंत समुदाय के उत्थान को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। वर्ष 2015 में पहली बार वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाया गया था। पिछले एक दशक में यह विश्व में सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य आंदोलनों में से एक बन गया है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
2: चीन में आयोजित शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस वर्ष भारत की रिकॉर्ड 7 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इन फिल्मों में हंटर्स मून, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, उमराव जान, चंदू चैंपियन, कालिदास 2, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज और फुल प्लेट शामिल हैं। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्मों की मजबूत भागीदारी गर्व का विषय है। चीन के गुयांग में विश्व मुक्केबाजी कप 2026 के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राचीन महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता शी यू वू को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और पदक तय किया। वहीं मीनाक्षी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया की तीसरे नंबर की मुक्केबाज कजाकिस्तान की अलुआ बाल्किबेकोवा को 5-0 से करारी शिकस्त दी। पुरुष वर्ग में दीपक ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में अजरबैजान के नबी इस गंदाद्रोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। निखिल ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में अजरबैजान के अमीन महमद ज़ादा पर 5-0 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले स्नेहे 65 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड की किंगा क्रोवका से 0-5 से हार गईं और प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। हॉकी में भारत ने आज FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला शनिवार को चिली से होगा। फीफा विश्व कप में ग्रुप बी में कनाडा ने कल रात कतर को 6-0 से हरा दिया। कनाडा के जोनाथन डेविड ने 3 गोल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 6 पदक पक्के किए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल अंशु जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
2: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिला, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।

0: का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया। और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए। हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस आपका। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओइस्ट तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे

0: की नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे, सब ने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया, और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियाँ अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज़ बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का एक फ़ायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ, उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जी

में बढ़ोतरी, और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ, जो कि लेटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो को आप अब जैसे अब यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं,

0: ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज्ड है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो को आप अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इंपोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बन के इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के ये लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे, तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग, और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और

0: गैस मिल रहा था। तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजन लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टेरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी,
1: बिल्कुल
0: जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालिया साहब का, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के, उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफ़ी बार सफल हुए, मैं खुद वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफ़ी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से, पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफ़ी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफ़ी लाभ पहुँच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफ़ी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफ़ी तादाद में फोर्सेस पहुँच रहे हैं वहाँ पर और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर कई जिलों में जहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहाँ पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे

0: दुकानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था, तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं, तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें, तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं, तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले, तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है, उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतरराष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए, तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए, तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से, और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो

0: ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40 से 60 70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधान प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, और शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में

0: लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी और सत्यापन तंत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्विता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्विता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இரவின் மடியில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार

0: योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के विषय में बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: கீட் அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது நினைவில் நின்றவை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक करवाल

0: विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जॉयल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। इससे पहले वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता रहा है, ऐसे में ये नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माहे में भी मंगलवार तक बारिश का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shivangi. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The two leaders will later address a massive public gathering marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led government of Odisha. During the program, they will launch development projects worth over 47,600 crore rupees at Rai Rangpur in Mayurbhanj. In West Bengal, Mr. Modi will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district today. He's also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of multiple development projects in the state. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Under this installment, more than 18,880 crore rupees will be transferred directly into the bank accounts of over 9.44 crore farmers across the country. Prime Minister Narendra Modi disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality." He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. The Supreme Court ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of justices, P.S. Narasimha and A.S. Chandorkar, held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms the part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and the other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jaishankar spoke about the deepening India-US partnership across domains, even as both nations navigate its issues and complexities. He added that

அடுத்து டி எம் சவுந்தரராஜன்.

0: நேயர்கள் இதுவரை கற்றிருந்த நிகழ்ச்சி 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर जाएंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दूनागिरी, अग्रे और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में 1 रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झार सुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का

0: वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे जो जुलाई 2025 से इस पद पर कार्यरत हैं। श्री अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले भी वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। ये फैसला 17 से 19 जून तक हुई FATF की बैठक के दौरान लिया गया। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया है कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे शंभू प्रसाद पंवार से राग मधु कौंस। विलंबित ख्याल झपताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं बैरन भई रैन। एक ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं एक पल न परत चैन।

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்த இந்த நிகழ்ச்சியின் 1.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய இனிய ராகம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பண்டிட் ஷாம்பு பிரசாத் பவர் அவர்களின் பாட்டு இடம்பெற்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் ஒலிபரப்பாகும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भाजपा सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दूनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में 1 रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झार सुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपये लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्ड शायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के आने की आशंका के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर है। नीरज चोपड़ा ने अपने 3रे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वे अपने

सीजन के पहले इवेंट में चौथे स्थान पर रहे। श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रमेश थरंगापथीरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இதுவரை பொங்கும் மங்கலம் நிகழ்ச்சியில் மாம்பலம் எஸ் சந்தானம் அவர்களின் நாகேஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். திருவல்லிக்கேணி எஸ் சாந்தகுமார் அவர்கள் தவில்.
1: தொடர்வது செய்தியறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नीति का समर्थन करता है, ऐसे में ये नेतृत्व भूमिका आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसले में ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में